रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम तन

तारे सबसे ऊंच राम परगास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट ले सात पत कोवे सात जना पग मलमल तोवे पंच फूट जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ क्यों लागी सह समाद थान कनंतर एको स्वामी।

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा, गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस संते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल।

इवै सुवाओ पज अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम, गौन महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल, अनेक बार बंधन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुरसो प्रसन्न पय वडपाग, आठ पहर गाय गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद, रहाओ हर गुण।

आज संग जपिए हर नाम सागर पर बोहित प्रभ चरण अंतर्जामी प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंचदूत पागे विकराल जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार गौण महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव अब कृपाल दयाल।

काट काट अंकर सर्व समाही अपने दास का हल्प पल तुम्हारे पति पावन प्रभिर तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद पंक मंत पजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभु त्याए मन बांसित पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निधान महाविचार नानक बख्श लिए प्रभु आप सदा सदा एको हर जाप गौण महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत करिए संसार बड़ पागी पाये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल किसको पोए ना सके जमकाल जग में आया सो परवान गुरमुख अपना खत्म पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूरन मंत हर तन काट किए पंडार मिल सतगुर सबका सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौण महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ मां विचार पंच दूते मंत सौ शरण आई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ।

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिदारो, संत का निंदक अकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पा

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत, गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ।

कायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध संग जपे निरंकार निंदक कै मोह लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिसको होत नाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए जो जो शरण

हार अपने दास रखे कृपा पार नानक के प्रभु प्राण आधार गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना एहो बिनसे ना एहो जाए आज जुगा दी रहा समाए ना इस उसन नहीं इस शीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं इस सोग।

लागे कट कट अंतर सब ही जागे तीन गुणा एक शक्ति उपाया महा माया काकी है छाया असल अछेद अपेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ताकि गत नित कछु न पाए नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहारे जाओ संतन के संग राम गुण गाओ संत प्रसाद किल विच सब गए संत शरण वड पागी पए राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे रहाओ पार ब्रह्म जब हुए दयाल साधु जन की करे रवाल काम क्रोध स्तंते जाए राम रतन वसे मन आए सकल जन्म ताका परवान पार ब्रह्म निकट कर जान पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे जन्म जन्म का सोया जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रहो सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गौण अष्टपदियां मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूरत सफल जा की सेव अंतर जामी पुरख विदाता आठ पैर नाम रंग राता गुरु गोविंद।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल खान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुरु बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूरख स्यों बोले चखमारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर कामना आवे, पशु मरे दस

गले जैसे पास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहा एले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कट बिन से गगन न जाएले।

कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे। हर में तन है तन में हर है, सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौण बाणी कबीर जियो की, हर दूजा

कालो सात हथ ना तोड़े तरह ध्यान वहां कह हृदय बठे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है। तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ ना एहु जति कहा वैसे हो। ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई। रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी। ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती। ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़बो काल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंधन ताते जाहे। इक दोए मंदर इक दोए बात हमको साथर उनको खात। मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश।

संसार शंख को बिख बिछे संसार कर सीगार बह पकियारी संत की ठिठकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे त्रकडायण हम तिस का बोझ

पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तौ लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन पावन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रख किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े भूपत राजे है छेदे। सुहागन उर्वार ना पार, पांच नारद के संग विद्वार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते। रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये, साधु बिन कैसे अवगत जाये। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस हट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार राव। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ न पतिए परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अत रूप विचखन। गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम।

जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्य बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी की।

तो न पुजे हर कीर्तना मा अपने रामे पजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अछता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण तजे वाको त्या

खन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर पोतक अलख लिखाया जैसे दिखे हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटो सब परमा हर को नाम ले उत्तम कर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंगले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नाकस हरे प्राण अजय मल की ओ बैकुंठे थान सुआ परावत गन का तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपते परी सिमरन द्रोपद सुत उदरी।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तनमय नामा यूं कह गीता। बिलावल गोंडे आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ।

अंगत लांगत जाती थी। पांडव तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक।

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड, जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल फेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पौहारा, निंदक सो दुसाद विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़।

करे जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले इन विद सागर।

सुरत शब्द साखी मेरे सिंगी बाजै लोक सुने पत चोली मंगन कैताई पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार न ला गए रहा पानी प्राण पवन बंग राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे राम करी मैला पहला सुन मा छिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ओनस सुन समाज समावे रहाओ तिथिया पाए पगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए, तनवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संग मिलाए। दीठा दारू को

अक्षर टोचन को आए निचो देव दयाई गुर पार पारण हारिया जो भगत पूरन अविनाशी हों कुछ को बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिन आया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मैला पहला सुरती सुर कर लाये एक तन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तेन सदीवा बन

जंग जाओ पांडे पाओ पवे तुझ आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दरकिया बाता कहता कहन कहाया राम कली मेला पहला सागर में बूंद बूंद में सागर कौन बुझे दुध जाने उत्कुद चलत आप कर चीने आपे तक पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई किसते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गतमित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन के सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रसमोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबानी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया।

आए शब्द तृप्ता से रहाओ। पंच बैल गडिया देह तारी, राम कला निभे पत सारी। तार टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार। गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी। भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी। सहज जगोता बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा। मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम कियाए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडे।

तो दर्जे सुख पाओ। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो गुरुमुख बाणी। रहाओ परपंच छोड़े सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निड पावो। इन विधि तत् बिलोई, परम चुकावो गुरुमुख लिवलावो। आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किसो करो बुराई। सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी। राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल बेगनी। ए विद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी। रहाओ सुर्ग पवित्रा, व्यर्थ पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे, जत कत देखो हर गुनी। मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का ता निवासा, जय अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हों त्यागनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने। अचरज किस तैन न जाई, बस

अक्षर मेरा अंतराज भोग रस माणी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चिंतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्णा काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ना कतू जाता बरना साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

कोई ओडा नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाछे पुस्त, कोई सुरजिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का।

मनहार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत।

बैसा कर डंडा करया, क्या तू जोगी गर्दह परया, जपनाथ दिन रहनाई, तेरी चिंखा दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दे।

कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ओसोरे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले बीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्न निवारी अनद रूप प्रटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ मैं माजा की जहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले परया सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप दया।

जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता ओ अचरज नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी दही बलाए बुझ गई कृष्ण निवारी ममता गुरपुरे लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना गुर पकराए।

उमीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई कर पार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक वरण।

संत जनी परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माने इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच सबद तें पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन।

झारे नीचल आसन बेसुमार दुजना डोले कतहु धावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे प्रमते मोह न माया जाले सुन समाद प्रभु कृपाले ताका अंक न पारावारे आपे

सेवा तेरे काज ना गृह राजमाल तेरे काज ना भुखे जंजाल इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण दायले मीता हर सिमरत तेरे।

कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार हर संत का

सेवा, जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते क्यों का ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

पौजल पार परला रहाओ। नाम निदाम त्याय मन अटल, ता छूटे माया के पटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद बिचारा, बिन हर भगत नहीं।

संजवा संत के संग राम रंग केल आगे जम स्यो हुए न मेल अहंग बुद्ध का पया विनाश दुर्मत होई सगली नाश राम नाम गुण।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा। आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्त तू आप।

करत ते हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख

परमेश्वर स्वामी काटकों दाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा हर हर हर।

दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय कर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस पेटक मिटे

साध संग दुख जाए रहाओ। जहाँ कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तर

के बैसंतर पागे, माटी को जल भेद त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, काट में सिंध कियो परगास, ऐसा सम्राट।

दर्शन पेखत हुए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के, जहाँ के

नाम जपत परम सुख पाये, आवागौन मिटे मेरे मीत रहा। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए।

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे। राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे। जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल।

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तक विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया।

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

प्रभु हर नाम हृदय लय पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर

ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरु मुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरकत भया, आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया, राम कली दखनी मैला पहला, जप सत संयम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना, एनस रह एक लिव लागी, साचे देख पति ना रहाओ, रह गगनपुर दृष्ट समय सर, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन परपुर लीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक में सर्व सर्व में एका, के सतगुरु देख दिखाई, जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लखन न जाई, दीपक से दीपक प्रगासिया, त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे।

चारी सब द्रवे आसन कर आजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

तर पाव सागर आत्म तत्व विचारी गुरु सेवा तेसना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन

आवन जान बिपूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सुन रह लिव लाए रहाओ सत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम पुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत वजाई मन दृढ़ कर आसन

प्यार न लागे जोगी ना सच पल्ले पाए, सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए। पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे।

फारसे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करें जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जो

कहे नानक मुक्त हो वे जोगी। साथी रहे समाए राम करी महला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता सत गुरु बूझ बुझाई। संतो गुरुमुख दे वड्याई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई। आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग ना।

नाम नमन निध पाए, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चित अदुष्ट लगाई।

नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पत पाई राम कली मेला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर दिन सब कुछ मेला संतो, क्या हो पूज कराई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाना मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्म

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए, आपे निर्मल पूज कराए, गुरु सबदी खाए पाए, पूजा करें पर विध नहीं जाने, दूजे पाए मन लाए, गुरुमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाए, पाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आप ना पछाणे संतो, कूर करें वड्याई, पखंड कीने, जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप

खंजन मेरा प्रभु अंत सिखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सब दे मैल उतारी संतोष।

एक पेक करें सिरे अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन भगत करें दिन राती, राम नाम उधारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन भगत न हुई कभी, सह पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया,

माँ तुम्हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जागते।

एक नाम वस्या कट अंतर पूरे की वड्याई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहया और न करना जाई। आपे साजे सिर्फ उपाय सिर सिर तंदे लाई, किसे सिरे वो तास पावो सब गुर मेल मिलाई। अपना आप आप उपाय अलख न लखना जाई, आपे मार्ग वाले आप।

जंसी जय जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद मेरा प्रभ रहा सर्वथा।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कहतो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब तरती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे बड़े

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो सा

ठाकर को रख लियो चीता, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन।

इस सेवक मन आलस करे जिस विसरे इस निमख ना सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वड पाजी मिलिया नानक दास संग।

आए ऐसे राखन हार दयाल। जत तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यों तुखा मितंत, तन बिगसे गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, महत्ता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौष होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक देखो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब देखते हैं।

की कृपाई संत संग मिल कीर्तन गाया नहीं चल वसया जाए पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न जाई काल सियान उक्त न मेरी पूरे गुरु कमाई जब तब संयम सुख है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र मां बिख्या में गुर साचे लाए कराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच कर्म का बेड़ा बांधिया पर जल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई एक अंकार निरंजन निरपो सब जल फल रहा।

आओ खोजत खोजत लाल इक पाया हर कीमत कह न जाए संतो चरण कमल क्यों लागो त्याना साचे दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पै निहाला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कट आवे कट जाई संतो आप जुगादी है भी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप व्यंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब खाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम करी मैला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी उमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बार सूखा हर जप मलन पै जुतारी जिस ते लागे तिन्हें निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा धारी उधरे

ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰੇ ਨਾਰੀ।

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नानी बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना सम

कर्म कमाए। सहसे जीव मलिन है कुछ संयम तोता जाए, मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए। कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी। जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले। आप छद सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जो को गुर के बेमुख होवे।

सब रतन है निराजित जराओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपके हुकुम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन हो वे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वे एक कस्यो लिवलाए कहे नानक आप करता आपके हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तैसार न जाने तैसार न जानी गुरु बाजो तैसार न जानी तेरी गुणी संसार क्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा समालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया, जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे वित्तों रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए, हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए, हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने, हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कीते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत न पुसना लागे आए, एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अंग सब विसरे जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरा हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विकता तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया, मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल हित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर सब ज्ञान।

कैसा तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो, सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनों।

जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो। हर पाना गुर पाया मेरा हर तब करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाना पावे अना

गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निशान जियो।

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभु त्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरुमुख मिल निर्गुनी।

ना विसारिय राम रामा राम रमा कंठ उर्धारिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसें दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवरण कोई जियो, सदा सदा हर सिमरी है जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो। बल जाए नानक सुखे दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

रे। बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन ना जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब मिली।

मन बांचत फल पाया हर नानक नाम भने चंत। हिम कर रुत मन पावती माग फगन गुणवंत जियो। सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो। ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत।

हर जप उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरे तज आप सरणी।

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ ससे सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतर साचा।

गर्ब गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुरु विचार, अगम अगोचर।

सह सोताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई और क्या कही है किछ कहन ना जाई खोजत खोजत।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंग।

चार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दै दिस टूंड करे मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तुलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड, तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त।

गुण जम पुर जाहे, ना तिस एहो ना ओहो है, अब गुण फिर पछता है, ना तिस ज्ञान ना त्यान है, ना तिस तर्म त्यान, विणना में निरपो कहा, क्या जाना अभिमान, थाक रही किव अपना, हाथ नहीं ना पार, ना साजन से रंगुले।

तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे, ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विख

आए वन तृण तू डट फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नान

हर पाई है मत को परम कुला है सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखचार साउ सदाए संच तन दुबदा होए कुआर सचियारी सच संचिया।

क्यों गणी, खप खप मोए बिसंख, खसम पछाने आपना, फूले बंद न पाए, शब्द मैली खरा तू, किमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन त्यान तू, आपे वसे शरीर, मन तन मुख जा।

सरत्याय संपै पूर्व लिखे की पाये संपै कारण चातर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाया।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द नाची नहीं सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखी है।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हूं संत जना बल।

कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुक्म सिधाए, नानक सदार जाए आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने, सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक, देहो सच्चा बिचारो।

नावे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो खंडत निद्रा अल

अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुर चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर

ऊंदो खप्पर पंच पू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम।

एहो मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई सार नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

गुरबचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुकम बिस्माद हुकम पछाने जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाये साचे शब्द समाय लिया एक एको सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किछ सूजे।

जोग जुगत सच रह समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड़ पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

कट कट तेद गुरमुख वैर विरोध गवावे, गुरमुख सगली गणत मिटावे, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता। बिन गुर पर मैं आवे जाए, बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए, बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट, जिस गुर मिले तिस पार उतारे, अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवे हार, तन हटड़ी एव मन वन जारा, नानक सहजे सचवा पारा, गुरमुख बांधियो सेत विदाते।

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहस्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हिवै का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विच्चों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वस है सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम करना।

परे सच भाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिय पवजल संसारो। त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो। बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए। गुरुमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे पाग समाए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई। नदर करे शब्द कट में वसे, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रख खाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हो मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया।

न ग्रासे, रंग न राता, रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल ताता, बिंद न राख्या, शब्द न पाख्या, पवन न पादया, सच न अरादया, अकथ कथा ले सम कर रहे, तो नानक आता।

पियो आत्म सुख तारी, सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी, इहो मन मैगल कहां बसियले, कहां बसे इहो पवना, कहां बसे सो शब्द।

हार, गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उरधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल मिला।

कहलाती जा। सतगुरु सहजै दा खेत है जिसनो लाए पाओ, नाउ बीजे नाउ उगवे नामे रह समाए। हौ मैं एहो बीज है सैसा गया विलाए, ना किछ बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए। अम्बे से ती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकस्या जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी नाहे, जिस वे खा ले सो वेख है जिस वस्या मन माहे। महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख पाए। दुख विच जमे दुख मरे हो मैं करत विहाए, आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाए। जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाए, नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा, सतगुरु मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए, अज्ञान का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए। पौड़ी, सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द त्याई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहा उस श्लोक, कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए तैसे बा

पाए पथ खोए, हर नाम कदे ना चेतियो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसे जम दंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी शक्ति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर शक्ति। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करें पगती, इनानो पौ अगला पूरी बनत बनती। सब इको हुकुम वर्तदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की चूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानई हो मैं छडे न कोए, गुर प्रसादी हो मैं चुटे जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहे, जीवन मुक्त क्यों होए। पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाये जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे, नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे यो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले। सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगे पावे मान। पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरुमति कर चानना आनेर विनाशन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वन त्रिण, सब किस आपे आप है गुरुमुख सदा हर पण। सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई, श्लोक महला तीजा अभ्याग।

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत के नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तकत सच्चा।

सच्चा सब समाए पौड़ी। आप अलिपत पदार हैं होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता सिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत होए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुझ जे वरदाता नाए किस आस सुनाइए गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाइए रस तत सादा बाहरा सकी वड़ियाइए जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाइए कप अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसे प्याए।

नानक अगे कुछ ना होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगर, अंदर लाल जवे हरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत

को हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता। मन मुखार मंदर की सार न जाननी।

करमा गैती किया जाए, रोवे किरपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाए पतारे।

पूजा जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुर शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई श्लोक महला दूजा। अंधे कह राहे दस्य अंधा होए सुजाए होए सुजा था नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एना आखियन जिन

कोई जिथे सो वस्त ना जापई आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच प्रतिये सा सब किस सचो सच

नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढोले अंतर प्रगाश कट चानना हर लद्दा तोले आपे परम पुलाइंदा किस कह न जाई श्लोक महला दूजे।

का सवार गर्व न की जय नानका मत सिर आवे पार पौड़ी सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच त्यायन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले भगत सोन गुण गाव दे गुरमत अचले रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले आपे मेल

प्रसाद जन नानक हर प्रभ बुझिया गुर सत गुर कै प्रसाद पौड़ी खटन हारे थात आपे ही खटिया आपे पूरा साहु आपे ही खटिया आपे कर पासा।

सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु देहो दिखा ले, हूँ तिस देवा मन अपना, नित हृदय रखा संभाल, इक सतगुरु बाहरा त्रिक जीवन संसार, जन नानक सतगुरु।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजू

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो

सदया माया स्वावड़ा तम संचया नाम अपार अच्छे तैत तैलु मन्ने न हुकम अपार। जन नानक मंगे दान।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

जिस ने मस्तक पाग तुर लिखिया सो सिख गुरु कह आवे आप तरे आप तंग सब तारे सबा सृष्ट छावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह

इक्कस की शरणाए, इक्कसियों का तिरहड़ी दूजी ना ही जाए। इक्को दाता मंगिए सब किछ पल्ले पाए, मन तन सांस गिरास प्रभु इक्को इक त्याए। अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए।

आपे वैद आप नारायण है, ए वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण है। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा हुक्म।

कितना पौड़ी, जिस कै मस्त कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

fare. तो से आगे बदन पसार रहाओ, पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जा

जी मुख वेद गायत्री निक्षैसो क्यों ब्राह्मण विसर करे। जहाँ कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

जोत राम परदासा गुरमुख बिरले जानी राव पावर एक पोप रस बीदा बारे ले उर्धरिया सोरे मजे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया करती जलहर सोखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन इहो बिरवा।

रहे निरालम तारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सीजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन, चिंता मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु

मंदर सोवे पटंबर तान सेज सुखाली बिरसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये यो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात।

निराशा जब कुंभक पर पुरलीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया सुनते सुन मन बसाया।

अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, तै कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीहत हौ रे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झारे। नालियेर फल से बर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कमीर कुल जा।

आकाश मधे परमियले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नाम बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये

पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

तुलसी माला, गुरु प्रसादी पाया, नामा प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु हुए लखाया, राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उंट तीर्थ मरे, अगन दह काया कल्प की जय, अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजे।

कुछ करे तम जो ही वाले गारे राम नाम सर तौ न पूजे असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर तौ न पूजे मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पी।

सब सुनिए अनपौ पाओ न दर्श है। लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारसे ना परसे। देव संशय गांठ न छूटे

इड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई संतो तहां

तहें बाजे शब्द अनाहद बाणी, तहें चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, एस कला जो जाने पे हो, एते पास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काती, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतल खाती, जागत रहे सो

मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास खरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाए खरे।

पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे।

तो गुरबचनी हर सारी हर कृपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिरसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मत महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुरु चरण

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम, तुम वड वड पुरख वड गे, जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवे तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुरु सुने, किल बिख पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, जो जल कुंचर तदुए बांधेओ, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुग ने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभु वड ने। नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रभ ने, हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुणे।

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुरु संत बतायो गुरु चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुरु सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुरु के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन ज्ञान त्याना कवन गुनी रीझावे सोई जन सोई निज पगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमख ना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महा मंगल रूप किछ आन नहीं दिसतावे।

जम की त्रास मिति सुख पाया निकसी हो मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो हाथ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ देखियो दास का कुल न विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो।

हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो नट महला पंजवा।

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत हो है पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपद।

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अतमीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध दिसारे गुरमत राम नाम तन

मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे। मत मैला चौथा राम हम पात्र निर्गुनियारे। कृपा कृपा कर गुरु मिला।

बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लैकू

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाय, नखीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस पै कुब जाको, ले बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बुलारे, मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी, जम कंकर मार बिदारे।

किच ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण।

मन सरदा कर हर तारे, मेरे प्रभ सरदा भगत मन पावे, जन की पै सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे, सब देख ब्रह्म पसारे, एक पुरुष एक नदरी आवे, सब एका नदर निहारे, हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई, सब चेरी जगत समारे, आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारे, अंतर वास बहुत मुस्काए, ब्रह्म फूला मृग सिंहारे, बन बन टूट

प्रभ को जन अंतर हृदय लोचे, प्रभ जन के सांस निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, आपन आप आप प्रभ ठाकुर, प्रभ आपे सृष्ट सवारे, जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे, नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे, ज्यों पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी, हर हर लाज निवारे रहाओ, कर

मिल सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुरु अलक लखारे। नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरया रिद अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुरु गुरु निस्तारे। पवन सूत सब नीका करया सतगुरु शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदर हम लिखती रे नाम के कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगमा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर हार हर उधारियो, जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा। जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साधे आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ। वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुरु मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बात।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब किलिवित पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली खिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दर्गे बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद

गुरु चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली दौड़ा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा रहो। कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पय शांति आए, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर तापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम है, मत गुरु मत राम रसाला रहाओ। गुरु मत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम से आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जान हूँ हर मात पिता प्रपाला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल विख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल विख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पू।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचत।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक।

पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सगल निद हर हर हरे।

सदा सदा से वो कृपाल, सदा कर्म जाके दीवान, बे मोहताज नहीं किस कान, सब किस करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो है उधार, नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात, माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी, प्रभ एक कारण करना रहाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल, रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल, आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ, कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ, माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार, कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ, इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार।

तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणा

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पैने कामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू मैला पहला कर पहला।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराए चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई।

कोई किछ खाजे किछ तर जाइए जे बाहुर दुनिया आइए सज काया पट हडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरन

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड

आने तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पंत नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाउ सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म ना करना।

अवर पला संसार मारू महला पहला। एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ। ना एहो तन जले।

इस तन बिन कहो किने परमगत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जय। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जय। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के, साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पे खारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरुपूरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्मल।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का वापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हों मैं जलिया मनो विसारे।

ममता पवे ख्याली जम पुर फासेगा जम जाली हेत के बंधन तोड़ न साके ता जम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो मारू मैला तीजा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद।

बाबा देहे वसा सच गावा, जाते सहजे सहज समावा राव, बुरा पला किछ आपस ते जानिया, ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का होआ, वर्ते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है, इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुबदा तदे विनासी, ज्योतिष पाणा सो सतकर मानिया, काटी जम की फांसी, पणत नानक लेखा मांगे कवना, जाचू का मन अभिमाना, तास तास धर्म राय जप्त है, तय सच्चे की सरना, मारू मैला तीजा, आवन जाना नाथी है, निज करवासा होए, सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए, ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार, गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार, रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हाथ किताऊ ना पाए, जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए, वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए, आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे, नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे, मारू मैला तीजा, पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए, हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए, मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए, सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ, ना मैं जात ना पत है, ना मैं थ्यो न थाओ, शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए, यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए, तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए, नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए, भगत खजाना बख्शियोन गुरमुखा सुख होए, मारू मैला तीजा, सच रते से टोल लो से विरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार, बाबा साचा साहिब हृदय समाल, सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ, एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए, गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए, एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए, ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए, जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास, मारू मैला तीजा, मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए, सो साचा सा लाही है तिस जेवर अवर न कोए, मेरे मन अनदिन त्याए हर नाओ, सतगुर कै बचन अराध तू अनदिन गुण गाओ, रहाओ गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु देव।

जम पुरबत दे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभु वे प्रभाव है ना तिस तिल ना तमाए, नानक तिस शरणाई पज पो आपे बख्श मिलाए। मारू मेला चौथा थर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे, दालद पंच सुदामे मिलियो भगति पाए तरे, भगत वचल हर नाम किरतारत गुरमुख कृपा करे, मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे, नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे, गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे, जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे, बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोर बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे, जन नानक हर कृपा धारी उर्धरियो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिव लाई, साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जपियो ते पाए, गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया, तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया, शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया, हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया, वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया, नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया, अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभु मन पाया, गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

तेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समानी। मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे।

और हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किलविक काटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा। सिर

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपरी एक औला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रु बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे विचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे बिदर दासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमयो बहु पांते अनक

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो मुक्ते सुन कर

सहज आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन।

मारू महला पंजवा। जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने, बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारियो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अग्न संग ले जा रहे हो। मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बिदारे हो रहाओ। असाद रोग उपजो तन पीतर, तरत न काहू तारे हो। प्रभ विसरत महा दुख पायो, एहु नानक तत विचारे हो। मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ, जाके वस है सगल संसार, आपे आप

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीस उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। सुभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुभव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तैं अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताओ लागा गोविंद सिंह काल पाई खाए खेत मेरे जमिया निखुट ना कबू जाए पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने।

सच बैठता सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया मारू मैला पंजवा।

रूप रंग खुशियाँ मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूड़े रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने, सो मिलिया जे हर मन पाया, सो पूला जे प्रभु पुलाया, नह आपो मूर्ख ज्ञानी, जे करावे सो नाम वखानी, तेरा अंक न पारा वारा, जन नानक सद बलिहारा।

गढ़ है, एक सुखने दाम न छड़ है, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न हो।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल और अंतर तारो, दिखिया बनते जी।

नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मा

केला जात के केला। हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

उठ फिर पावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अंगनेर मूठो बेचारा अनेक दोख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाए प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभु स्वर्णी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभु दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप से काडनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साद रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आप उबारिया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डह का

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय। मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा, यह ओट आधारा।

सगलो भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

संयोग विजोग तुरु ही हुआ, पंच तात कर पुतला किया। साहे कैफुर मायड़े जी देही विच जियो आए पया, जिथे अग्न पखे परहारे उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया।

सिमरो प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो, गणताहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधि आई, ताको दुख हरे हो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है, गही आम शरणाई। मारू मैला नामा अब मैं कहा करो री माई, सगल जन्म विक्रम से खोया, सिमरियो नाई कनाई रहाओ। काल फांस जब घर में मेली, ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय। जो संपत अपनी कर मानी, छिन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन, हर जग सब न गाई। मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो, माया के मद जन्म सिरायो, राम पजन नहीं लाग्यो राव। जम को दंड परे ओ सिर ऊपर, तब सोवत कह जाग्यो, कहा होत अब कह पछताए, छूटत नाहीं भाग्यो। एक चिंता उपजी कट में जब, गुर चरणन अनुरागियो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस में पाग्यो। मारू अक्षदियां मैला पहला, कर पहला।

असर तीरथ बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमती नाम उधारा गुरपुरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमती जद मथी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना औ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

पाए कार कमावनी नित तोता पैसारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराइए गल औगुण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साचे वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा लादिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सो लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमती सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दीजे दोष गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोई ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्द गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपुर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन ना है जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू तूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे साचो चवे छूटे सोग विजोग, नानक नाम ना विसरे जो तिस पावे सो होग। मारू मैला पैला साची कार कमावनी होर लालच बाद, इह मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम दिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरत सुहावनी मनमुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरक पुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या, साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाख्या। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद निगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची।

तो खाऊं, ज्यों तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हक वडियाईया मेले मन चाओ, कीता स्यासा लाइए कर देखे सोई, जिनकी आसो मनोस है मैं अवर न कोई। सो साचा सालाइए साची पत होई, पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला, पाप पुन दे संग में खुदया।

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर ताकी है पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी विन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विदूचै अवरा के कर हेर गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटै दुर्मत तू मन के रह दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कै पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिल नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले दै दिस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पी रे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रह सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उर्धारी नाम बिना नहीं छूटत नानक साची तरकू तारी मारू मैला पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन।

दोहागनी सौर ले क्यों जाओ मैं गल औगण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेरे फिर समला सौर ले करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए फिर मुट्टी दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

हार गुरमुख बूझे जानिए हो मैं गर्भ निवार तो पावन तो जहियां मुझे ही आ कितियां नानक ना हो ना विछड़े।

सच्चा साथ न टुटई गुर मेले सहिया। बलिहारी गुर अपने सद बलिहार जाओ, गुर बिन एता पव तकी, गुर तिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासियां देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

सो सौ रंग रवंत सबे रुचि चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुची निस देहो पत्तन तूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुरु बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रवनाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो मैं।

एक जोत दो नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाई है बिन सतगुरु पल्ले।

लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो। रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव। रतन जवे हर बंजन आयो, कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसार्यो, एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री, इस ही मैं उर्जायो। जित को लायो तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो। जो पयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा, कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग। हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग। मेरे मान को स्थान मीत साजन।

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसे जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखण काट डार्यो मन न की नो रोस काज ओआ को ले सवार्यो तिल न दीनो दोष मन मेरे राम रो नितनीत दयाल देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम न रहो शरीर महासागर ने व्यापैखने उतर्यो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत कर परगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना।

प्राप्ते जा कै मस्तक पाजना। कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासे, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासे, दुर्मत दुख सजावना। दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद्रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना। संत बिना मैं थाओ न कोई, हवर न सूजे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन, हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्त जीवना। पहनना रखपत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। पोगना मन मदे हर रस, संत संगत में लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर पगती संग सीवना। मात्या हर रस में राते, तिस बहुड़ न कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्व निधाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद

बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हों बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हियालिए। संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए। छोड़ बह तो छूटे नाही, जो संचय तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम संभालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औद विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणी।

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवलाए।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

शब्द सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजै नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे, जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता सुत प्राता, सगले सैल उपाय समाए, अलख न लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है। फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दीस है, नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, पर पुरतार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर के ती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना वे काई है। साची कीरत साची बाणी, होर ना दी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखूं लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, दिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडाचारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अंकार निवारे, सत्तर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामन है समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया,

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे न

करम तरम कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सबद सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपौ मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पति जय अल

की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। भोजन साच मिले

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्पु।

वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो किस करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देख पावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ए बड़ाई है। जुग जुग संत पले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, एह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पराई, पर पर दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुरु शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख केला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर दे

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तत् लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वर्ताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत न दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वर्ते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वर्ते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रकत मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए विणनावे घट गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई बिन गुर बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन छीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुँह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आंख न चले सच खरा सचियारा है साच बिना दर्श जय न कोई साच शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की बिद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाद निराला हर अंत न पाये गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम सने ही दरगह मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

जलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की कह तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त

हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखी है मूले, गुरुमुख लिख विचारा है, गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है, मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ

भूख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे करण पलाव करे बहुतेरे नरक सुर्ग अवतार।

कू कर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगे प्यारा है।

नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है, मारू मैला पैला कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतरगत त्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आ गए, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, यो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्भ मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस में राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत क्यों निस्तारा है, साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबहू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार असारा है, बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी।

आले चाले बिखला दे छार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, खट खट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल।

आला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला साकत दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिव राता है अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा तिन में पंच तत् करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता तज माया हो मैं प्राता है इव मन पी जय शब्द पति जय बिन नावे क्या टेक टिकी जय अंतर चोर मुहे कर मंदर इन साकत दूत ना जाता है दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले शब्द सुरत बिन आ

सारे, जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिललावे, जो कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े अकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाजना बेली कोई, ऐथे ओथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करें क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी, सतगुरु अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन्न, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता।

मन मनसा मार समाता है सतगुर सेवे से प्रधाना तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजे जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे जिन कर चतर तरे विचारे आपके करता कर कर वे

जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, कृत पया सिर सहा है, संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काची सौदी तोता आवे गुरुमुख वणज करे प्रभु पावे पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत्मूल प्राता मनसाचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। कोड़ न कथने सिफ सजाई।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मैला पहला दखनी ताया नगर नगर घर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस समाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुरसब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर खापे हुक्म रजाई दसवें पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इकवा

या सब थाई कला किंच टहाएदा तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पमने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफलियो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएदा तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद ऋण चुनकार सदा तुन निरपो के करवाएदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ साजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएदा आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिज मंदर नानक साच कह।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप दनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सबाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधित साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, तुरु विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछो ताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं खै काला नरक सुरग नहीं।

पुरख नहीं जात ना जन्मा ना को दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विदसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गौ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहोरा गौ गायत्री होम जग नहीं तीर्थ नावन ना को पूजा लाएदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को शेख मसाई कहाजी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। पौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे, दसवें वासा अलख अपार है। सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाएंदा। गर्म है हाथ पटन वापा।

ते पंडार है सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा नदर करे पूरा गुर पेटे जम जम धार न मारे फेटे जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा आपे वर्ख है अमृत तारा रतन जवे हर लाल अपारा सतगुर मिले ता पूरा पाये प्रेम पदार्थ पाएंदा प्रेम पदार्थ लह अमोलो कभी न काटस पूरा तोलो सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा सच्चा सौदा बिरला को पाए पूरा सतगुर हृदय मिलाए गुरमुख होए सो हुकम पछाने माने हुकम समाएदा हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दीसे जगत उपाया हुक्मे सुर्ग मच पयाला हुक्मे कला रहाएदा हुक्मे तरती तौल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गैनारंग हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाएदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी हुक्मे सास गिरा सदा फुन हुक्मे देख दिखाएदा हुक्म उपाए दस अवतारा देव दानव अगणत अपारा माने हुक्म सो दरगह पैजे साथ मिलाए समाएदा हुक्मे जुग शक्ति गुदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराएदा काया कोट करे महराजा नेब खवास पला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही करवासा लब पाप पछताएदा सत संतोख नगर में कारी जत सत संयम शरण मुरारी नानक सहज मिले जग जीवन गुर सबदी पत पाएदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर तारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे सुनो सुन उपाएदा कौन पानी सुने के साजे श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे अगन पानी जियो ज्योत कुमारी सुनने कला रहाएदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय सुनने वर्ते जुग सवाए इस पद विचारे सो जन पूरा इस मिलिए परम चुकाएदा सुनो सपत सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे फिर बहुड़ जोन न पाएदा सुनो चंद सूरज गैनारे किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे सुनने अलख अपार निरालम सुनने ताड़ी लाएदा सुनो तरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच काल पाए त्रिभुवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समानी कुछ कुछ चलत किया सिर करते विस्माद शब्द देखाएदा सुनो रात दिन सदोय किए ओ पत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएदा साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण ताकि कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सप्त पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज्य तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा।

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा। पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा। इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

पाया पंच तत् मिल ए तन किया आत्म राम पाए सुख किया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सोजी होई काया गर महल मैली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आज जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया सखत सलाम होवे दिन राती क्यों साथ बढ़ाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुरु सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवार जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान।

दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरख सुजाना।

सारा सच्चे मेल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे योगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहार, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जमते क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, और ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम ना लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हों मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम

हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस जोत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुर देखाया। सतगुर मिलो आपे प्रभ तारे, सत कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया। अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिय, अंतर की दुबदा अंतर जरिय, पंच बाण ले जम को मारे, गगनंतर तनक चराया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुर गोपाला, सुन आनंद अनाहद वाजे, गुर शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया। अंतर की जब सतगुर जाने, सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बाहर सो प्रभु जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्व तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों सारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते ताक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम से आए, अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन से नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गै जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गै गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सरनावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय, संसा दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्ते, नानक हर गुर पाया, वाचे पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करे विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करे उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत नहीं।

अनेक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मी सहजे सृष्ट उपाय, कर कर

संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुक्त और न पाए कबहू सतगुरु बूझ बुझाई है सतगुरु सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिव लागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द बुझाई है सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरले किने पछाणी सच्चे शब्द रते बैरागी आवन जान रहा ही है शब्द बुझे सो मैल चुकाए निर्मल नाम वसे मन आए सतगुर अपना सद ही सेवे हों मैं विच्चों जाई है गुर ते बूझे तांदर सूझे नाम विहूणा कत कत लूझे सतगुर सेवे की वड्याई कृष्णा फूक गवाई है आपे आप मिले ता बूझे ज्ञान विहूणा किछु न सूझे गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द वजाई है जो तुर लिखिया सो

नानक दास कह बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजिक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौं मैं मेरा पसरिया पासारा, अंदिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना न जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

पूजे अंग दिन नाम रवे दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो में मल लाई।

रहे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध न होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे होए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आपे गुण दा

सात से ते पत होई हे। मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुरु सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रति गुण गावे। दर्शा से पत पाई है गुरुमुख नाम मिले वड्याई। मनमुख निंदक पत

पाए सुबाई है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए पगत।

सच्चे सब सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है, एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है, आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है, सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे।

मन मुखरोए दुहा श्रिया का खत्म है आपे आपे गुण में पी जाए गुर के शब्द सदा जन सो है नाम रसायन एव मन मोह है माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जाए सब नाम विच वरते एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हौ मैं मार सदा सुख पाया नाय पाचे अमृत पी जाए किलविक दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा सब किश आपे आप वरते गुरमुख तन मन पी जाए माया अग्न जले संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे अंतर सांप सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जाए इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जमना छोड़े बहु कर्म कमावे सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये हर हर रसना पी जाए मनमुख अंतर पगत न होई गुरमुख पगत शांत सुख होई पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जाए ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूझे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर करी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक नाम रते मन साचा, सच्चो सच रवि जय हे, मारू मैला तीजा, सच्चे सच्चा सच रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ता

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख हो वै सो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवे सच प्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अंदिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होवा, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, और माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया।

जा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है हम गुण नाही क्या बोले बोले तू सब ना देखे तोले तोल ज्यो पावे त्यो राखे रहना गुरमुख एक को जाता है जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक में प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द ना ही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम से आई है सदा सद।

पूजें इतना गुरुमुख शब्द पछाता है। पूरे सतगुरु बूझ बुझाई बिन नामे मुक्त किने ना पाई। नामे नाम मिले वड्याई सहज रह रंग राता है। काया नगर टह टह तेरी बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साज सलाहे साज समावे जिन गुरुमुख एक हो जाता है। जिसनो नदर करे सो पाए साचा शब्द वसे मन आए। नानक नाम रते निरंकारी दर साचे साच पछाता है। मारू सो ले तीजा आपे करता सब जिस करना। जी जंक सब तेरी सरना आपे गुप्त वर्त सब अंतर। गुर के शब्द पछाता है हर के भगत परे पंडारा। आपे बसे शब्द विचारा जो तुद भाव है सोई करते। सच्चे सो मन राता है आपे हीरा रतन अमोलो। आपे नदरी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी। कर कृपा आप पछाता है जिसनो नदर होवे तुर तेरी। मरे न जमे चूके फेरी साचे गुण गावे दिन राती। जुग जुग एक हो जाता है माया मोह सब जगत उपाया। ब्रह्मा विष्णु देव सबाया जो तुद पाने से नाम लागे। ज्ञान मती पछाता है पाप पुनवर्ते संसारा। हर्ष सोग सब दुख है पारा। गुरुमुख हो वह सो सुख पाए जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कितना कोई मेटन हारा गुर के शब्दे मोक्ष द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चितना लागे दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी अंत काल पछताता है। हर के पाने हर गुण गाए सब किल विकाटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी हर से ती मन गाता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए। हों मैं मेरा ठाक रहा है गुण अवगुण का एको दाता। गुरुमुख विर ली जाता है मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा। आपे मेले गुर शब्द विचारा आपे बक्से सच दृढ़ाए। मन तन साचे राता है मन तन मेला विच जोत अपारा। गुरमत बूझे कर विचारा हों मैं मार सदा मन निर्मल। रसना से सुख दाता है गर काया अंदर बहु हट बजारा। तिस विच नाम है अत अपारा गुर के शब्द सदा दर्शो है। हों मैं मार पछाता है रतन अमोलक अगम अपारा। कीमत कवन करे बेचारा गुर के शब्दे तोल तोलाए। अंतर शब्द पछाता है सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा। माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे। गुरमुख विर ले जाता है आपे करता करे कराए। सच्ची बाणी सच दृढ़ाए नानक नाम मिले वड्याई। जुग जुग एक हो जाता है मारू महला तीजा। को सच सेवियो सृजन हारा सबदे दुख निवारण हारा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम असहा है। आपे सच्चा सत वर्ताए एक जन सच है आपे लाए। साचो सेवे साच कमावे नामे सच समाहा है। तुर पगता मेले आप मिलाए सच्ची पगती आपे लाए। साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्मे का लाहा है। गुरुमुख वणज करें पर आप पछाने एक बिन को अवर न जाने। सच्चा साव सच्चे वन जारे पूंजी नाम विसाहा है। आपे साजे सृष्ट उपाए विरले को गुर शब्द बुझाए। सतगुर सेवे से जन साचे काटे जम का फाहा है। पन्ने करे सवारे साजे माया मोह दूजे जंत पाजे। मन मुख फिरे सदा अंध कमावे जम का जेवड़ा गल फाहा है। आपे बख्शे गुर सेवा लाए गुरमती नाम मन वसाए। अंदर नाम त्याए साचा इस जग में नामो लाहा है। आपे सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवे मन वसाए। जिन मन वस्या से जन सो है तिन सिर चूका कहा है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई। सदा शब्द सलाही गुणदाता लेखा कोई न मंगे ताहा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र किसकी सेवा
अंत न पावे अलख वेवा। जिनको नजर करें तू अपनी गुरमुख अलख लखा है। पूरे सतगुर सोजी पाई एको नाम मन वसाई। नाम जपी तै नाम ते आई महल पाए गुण गाहा है। सेवक सेवे मन हुक्म अपारा मन मुख हुक्म न जाने सारा। हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई हुक्मे वे परवाहा है। गुर प्रसादी हुक्म पछाने तावत राखे इकत करयाने। नाम मेरा ता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहा है। सब जग में वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। सब सलाहे से जन निर्मल निज करवासा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरमुख नाम त्या।

सच देवो सच समाहा हे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहा हे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा हे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा हे। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा हे। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अप्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे।

लाबू जै कोई नानक जन नाम सलाहे बिगसै सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरतै एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है दींदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए गुर कै शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रा पै, अंदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा अतुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अंदिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा सलाही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुरु कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुरु कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुरु कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुरु सेवा ते सब कुछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुरु कै शब्द

गुर का शब्द अमृत है वाणी, अंगिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप सफे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाह है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते

पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सतगुरु द्वारे, होमे क्रोध सबद निवारे, सतगुरु सेव सदा सुख पाये, शील संतोख सब ताहा है, होमे मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सबद तुहाया, पंच सबद मिलवा जावाया।

0: नानक गुरबाणी हर पाया
1: हर जप जाप समाहा है मारू महला तीजा गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार गुरमुख कार करे प्रभ पावे गुरमुख पूरा पाएदा गुरमुख मनुआ उल्ट करावे गुरमुख बाणी नाद बजावे गुरमुख सच रते बैरागी निज कर वासा पाएदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चे शब्दे सच तो वाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा गुरमुख मन निर्मल सत करनावे मैल न लागे सच

सत्सेन सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाएदा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा। गुरुमुख हो वह मन

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकाश।

जिस विच रविया शब्द अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वंजन वापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे शब्दे बूजे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदर में मनु आतावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएदा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएदा आपे सतगुरु मेले पूरा सच्चा शब्द।

तक अंतर रसना नाम से आएंदा दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले माया मोह बद्दा जम काले जम की फांसी कब होना टूटे दूजे पाए परमाएंदा जब तब संजम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द ना कमाही गुर के शब्द मिलिया सच पाया सच्चे सच समाएंदा काम क्रोध सबल संसारा बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा सतगुर सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाएंदा पौन पानी है बेसंतर माया मोह वर्ते सब अंतर जिनकी ते जात से पछाने माया मोह चुकाएंदा इक माया मोह गर्भ व्यापे हो मैं होए रहे हैं आपे जमका ले की खबर ना पाई अंत गया।

आपे साजे अवर न कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अदम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आंख बखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाएंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किस करे सो नहचो होई, जिस बिन दाता वरना कोई, जिसनो नाम दान

को पाएगा। सतगुरु सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुरु ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएगा। सतगुरु सेवे सेवड़ पागी,

का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएंदा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कानी पीड़ाएंदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएंदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान

मन्ने सोमिले तुदाए। जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराए दा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाय, जितनो पाना दे तिस पाए दा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाए दा, सतगुरु मेले दे वड्याई।

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही ते रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कह शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा

जिन्नी ना पाया सेवड पागी गुर कै शब्द मिलाएगा काया कोट अत अपारा तिस विच बह प्रभ करे विचारा सच्चा न्याओ सचो वापारा निचल वासा पाएगा अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विर लैकिने थान पाया इस साथ निभ है सालाहे सच्चे हर सच्चा।

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पाजा गुर

वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा, गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविद मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जांदे बिलम न लाएंदा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा, मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा व्यापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौं मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करें अरदास तू आपे मेल बहा ले पास। सबना जिया का सुखदाता पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे यह मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

भगत सराहन सदा लिवलाए, तौ शरणाई उबरे करते आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया, हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए, जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे, गुर कै शब्द मरे मन मारे हऊ मैं जाए समाया, आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई, अंतर जोत

पंचदूत बस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे, सहजे सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख बखानी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्बे रव रहा कटवासी।

जन नानक नाम जपो पव खंडन सुख सहजे रहन विहानी है जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परे।

हर हर नाम जिन्हि सदा त्याया, तिन्हि गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वर्ते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन में बांधी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन में था

स्थान थन अंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय काल जपो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, तिस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन।

जित उतरे भूख प्यासा है, सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे, तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना।

वचन दे छोड़ ना जा साहे। फिर कया हों हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जिस कान न चंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदा साहे। जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

करहे भगत अर रंग अपारा, खिन मैं था पुथा पनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुकुम मन भगती जाहे जिस देहे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा, गुर सासत सिमरत खट कर्मा, गुर पवित्र स्थाना है, गुर सिमरत सब किल विखनास है, गुर सिमरत जम संग न फास है, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना है, गुर का सेवक नरक न जाए, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुर का सेवक साथ संग पाए, गुर करदा नित जी दाना है, गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को विघ्न न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिलिए सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिए ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तैं आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ

तिथे हर त्याय सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमा था, क्यों मिलिए प्रभे परवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, ज्यों पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाए दा, तू आपे करता कारण करना।

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथा।

सतपुरुख सतगुर परमेश्वर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच तातु पै पार ब्रह्म होवे।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा वेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहो रलाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरों पीसों संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया।

सिमरै बाणी सिमरै सगले हर जना सिमरै ब्रह्मे बिशन महेशा सिमरै देवते कोट ते तीसा सिमरै जक्ष दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

परम रुना गुरु का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भाग है सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन सा

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जनबां छै जा चंगना।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रतना।

आदमद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुरु परमेश्वर गुरु गोविंद गुरु कर्ता गुरु सदबक्षंद गुरु जप जाप जपत फल पा।

सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किछु ना हुआ ता भी ना ही किछ काड़ा उहा

अत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा एक ना पार लंगावे आपे सतगुरु जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुकम।

आई अगम अगोचर बेअंत अतोला है ना ही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अतगाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

थार गड़ा जिसे निवाजे गुरमुख साजे नाम वसे तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसे न आवे जम नेड़ा कीमत कागद कही न जाई कहो नानक बेअंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई।

मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण

अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी। केशव चलत करें निराले कीता लोड़े सो होएगा। निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर पुज का।

मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत ना आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है महिय मृत लोक पयाल समीपत।

खपावे तुद लेप नहीं एक तिल रंगा। एक जी गुण कमन बखाने सहस फनी शेख अंत ना जाने। नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश

पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत बेद वक्त

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बौड़ न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिरत कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदले कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले ओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड़ अवर ना कोय, तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोय, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यो लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

पास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नवनिद नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने था परीड महला पहला। मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोय महला पहला। सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुरु।

जममग ना पावे, हर नाम ते आवे दिन सरात, हर नाम समावे श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुर्ग मृत पया।

लाल लवाए अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चले एहो खुट कदे ना निखुटे खाए खर्चियो पल्ले हर जन नेड़ ना आवे जम कंकर जम कले से सा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ले हर कृपा ते हर पाये जा आप हर कल्ले श्लोक महला तीजा। मन मुख वापारे सार ना जाननी बिख विहाजे बिख संग रहे बिख्यो तरह प्यार बारों पंडित सदा।

हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवै जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामै तृप्त नाही, दूजै परम पुलाया होमै दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाइए जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक में ला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई नै सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर न कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओह उजला मैला कदे न होए। सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जब तब संजमो गुर सब दी जापे, हर हर नाम ते आई है होमे अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजे कोए, गुण का गाहक नानका विरला कोई।

महलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आप की ते करतार, नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर सब जी दर जानिए अंदर महर असराओ। खरे पर खजाने पायन खोटिया नाही थाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ।

जानत है सब कोए। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म न जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोए जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चह भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

के सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवे गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन। जो जुम्मे महला पंजवा, पोरे पोरे रू

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डरा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे भरमाइया हाठा दो मैं कीतियों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एव हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया।

जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै, जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै, जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जान आपै, ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरताय।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदिया न खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म धीरा कर अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाय का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहासे, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अबनासी। दखने महला पंजवा दिखी अब ढंडोल, हिकस बाज ना कोए, आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। महला पंजवा आसक आसा बहरा मुँह मन वड्डी आस, आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे होद, बाज प्यारे अपने दिर ही ना धीरोध। पौड़ी तट तीरथ देव देवालया केदार मथुरा काशी, कोट ते पीसा देवते सन इंद्र जासी। सिमरत सासर वेद चार खट दर्श समासी, पोथी पंडित गीत कवत कवते धी जासी। जति सती सन्यासिया सब काल है वासी, मुन जोगी दिगम्बरा जमै सन जासी। जोदी सह सो विनसना सब विनस बिनासी, फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक फिर होसी। श्लोक दखने

दया धर्म तप नेचलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाऊ तथ नानक फिरी पसंदो हरियो थियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करें पुत्र कलत्र सने।

सुखदायक। ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक, सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक। मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक। श्लोक दखने महला पंजवा। नानक कचड़िया स्यों तोड़, ढूंढ सजन संत पक्या। ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़, महला पंजवा। नानक बिजलियां

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह।

राग मारू बाणी कबीर जियो की एको ओंकार सदगुर प्रसाद। पंडिया कवन कुमत तुम लादे बूढ़ोगे परवार सकल सो राम न जपो अभागे राव। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो काहे बुझावो भाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर राम रम छूटो नाहे तब बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जोलो मनो न तजे विकार जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्म राम रहो जटा भस्म ले।

राम उदक जे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चा

सुनने सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पांच

कमावें गे हर जी कृपा करे जो अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म न होई कहो कबीर जो नाम समाने सुन।

मुकत चारे सिद मिलकै दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद राज भविकन अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदामे धुरु अटल अज हूं न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे राव। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभु न सिमरो राम। कह कबीर से तह नहीं मूर्ख मुगध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मान्या रहा। अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न कीजे, कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गए पटके, ता दिन कृष्ण बस।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कै हर हर हर न जपस रसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना।

विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाहि। सहज समाज उपाध रहत होए बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत जन्म।

ओन बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन करम सो कर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हागन नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी। हों जीवा गुण गाए ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी हर मंदर आवे जा प्रभु पावे। धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे। नानक बरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे।

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुध बिन अड न मोलो कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत सबद मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे खलता पैसर बार साधन बिनो करे।

सुख मैली, नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सोखे अगन पखे। अगन रस सोखे मरिए चोखे, भी सो किरत नहारे। रस फिरे छाया धन काके।

सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इके ली खरी दुहेली मरण पया दुख।

राखो खेती हर गुरहेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अजो

सच संभालिया एनिस देख बिचारिया दावत पंच रहे घर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरजिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरुमुख जानिया करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे तेई अड़ घर सबद पतिनी सावरड़ तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी सुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल कच्छो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं बस

जमनाती कब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आप पछाने गुरमुख तत् बिचारी। सुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभ कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपूर तार रहे।

आया अपरंपर आपे थापो थापे किस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदया गुण कह हार परोवे गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सजगर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तो चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरे आ तू समझ अतीत आनया राम ए मन मेरे आ छड़ अवगुण गुणी समानया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरे नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन्ने उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सत गुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुग्ध किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीस टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित एक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुरु बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कह तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या। तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनात। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी, जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या, वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या। सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चव्या। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या, तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया। अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखन आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सब ही सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थिओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार।
सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाए ठाकुर, तेरा महल अपारा। सगल गुना के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा, सब गुण तेरे। खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभु मेरे। निमख दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा। कृपा करे ता पीवा, आस प्यासी पिरके ताई। ज्यो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभु मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता। तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोय पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गावी रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपुरा मिले लखावी रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लावी रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पावी रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आवी रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ावी रे। हर नाम अराधे से तन जन कई है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पावी रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात दल लावी रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मति जित हर पावी रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लावी रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौ रे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी।

देख दर्शन पेखत मन लपटानी, देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। हिदारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल राव अनिक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारियो, नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर, लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवा कर चौथा।

तुम देवो अपनो नाव रहाओ, करो सेवा सतपुरुख प्यारे। जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कवन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपाले सगल संभाले, सगलिया तेरी छाओ। नानक के प्रभु पुरुष विधाते, कट कट तुझे दिखाओ। किदारा महला पंजवा।

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किदारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ कार्ड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो प्रम्पो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात।

मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लेहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोई न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपक बिखिया रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अकथ अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा चूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ ब्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की छार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत।

जीवन रूप विसार जीवें ते कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत, आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत, कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली, गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव। गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली, प्रब एक अनक सर्वत पूरन विखे अग्न ना जली। गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली, प्रब चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे, कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे, रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे। चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय, शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं।

उस्तत निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीरथ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया प्रम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जया कांसी।

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे अस्त चरम बिस्सा के मुंडे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ राम न जपो कवन प्रम फूले तुम ते काल न दूरे अनित जतन कर एहो तन राखो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे क्या तो करे परानी जात इस पावे सतगुरु पेटे एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकार जाए। राग किदारा बाणी रविदास जियो की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुगत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे

तुझते बाहर किछु ना होए, तू कर कर देखे जाने सोए, क्या कही है किछ कही ना जाए, जो किछ है सब तेरी रजाए रहाओ, जो किछ करना सो तेरे पास, किस आगे की चै अरदास, आखन सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी, करे कराए जाने आप, नानक देखे थाप उथाप, इको अंकार सतगुर प्रसाद। राग पैरों महला पहला कर दूजा, गुर के शब्द तरे मुन केते, इंद्रादिक ब्रह्माद तरे, सनक सनंदन तपसी जन केते, गुर प्रसादी पार परे, पल जल बिन शब्द क्यों तरिए, नाम बिना जग रोग व्यापिया, दुबदा डुब डुब मरिए, रहाओ गुर देवा गुर अलखवे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा कहरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन विद तर्क उतारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे सुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो सात रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिसे जग जन्मा
बिक खावे बिक बोली बोले बिन नावे नेफल मर प्रवना राव पुस्तक पाठ ब्या करन वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

बिंदे सो ब्राह्मण होए, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, काटवद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

आचा फल पाई रे जन कैसे करो पुकारा हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा रहाओ एहो अकार तेरा है तारा खिन में बिन से करत न लागे बारा कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया कहत नानक मार जी वाले सोए ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

तिरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पणत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौ निद

चार हुक्म बुझ समाना। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देयो। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभे तेरे नाल, रहाओ नाम ना चेते।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रया ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों में ला तीजा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन्म।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ता से रहाओ। आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरु प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पवजल करना रहाओ, देख करे

औचित दोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिशा भूख अत बहुती पौकत फिरे दरबार गुर के शब्द मरे फिर जीवे तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राख्या उदार जो तिस भावे तिवे चलावे करना तुसु न जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वड्याई पैरों महला तीजा हो मैं माया मोह खुआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए मन मुख त्रिग जीवन सैसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर्षो कदे न लागे प्यार रहाओ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमावे कूड़ो होए सतगुरु मिले ता उल्टी होए खोज लहे जन कोए हर हर नाम हृदय सदवस्या पाया गुणी निधान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख देव आए नानक नाम समाए पैरों महला पीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाके जमजाला सतगुरु करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरे नाला गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना के बालक गम न करे रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा होए रघुराया हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझले उबार खिन मैं पयान रूप निक्षया थम उपार हर नाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार सवारे प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे गुर के शब्द हो मैं बिख मारे नानक राम नाम संत निस्तारे पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ अन दिन पगत करे दिन राती दुबदा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई मूरख दुबदा पने मूल

कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिए सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, हिच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता पाली, जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे, तू सब ना माहे, तुझ ते बाहर कोई ना है। हर सुख दाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे तिसके नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मैयल सबके भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

परम पूले नर कर्क कचरायण जन्म मरण के रहत नारायण रहाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत टोर सगल पराग देहे लोरो ने सो मुख जलो।

जे सो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बो नीर पवाया मैं पी गए अदक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को ना

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिन सी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागति आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे हाथ जम मार कै संगी पांथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवे पीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पै ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहु किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना

गरीब निवाज दिन रैन त्याए, नानक तो खुद खसम मेहरवान, अलो ना विसरे दिल जी प्राण। पैरों महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभु का पाना सत कर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवो, हर हर हर

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पछया आप कमाएं रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करें अन सेवा कवन बिछिया रसमाता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस पाज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का साचत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों मैला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तारे पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए संत

पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसंके नित डरता फिरे है निकट अर तेज न पाया बिन सतगुरु सब मोही माया नेड़े नेड़े सबको कहे गुरमुख तेज बिरला कोल है रहाओ निकट न देखे पर गृह जाए गर्भ हिरे मिथ्या कर खाए पई ठगोरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया।

सतगुरु सेवे खुले कपाट, अंतर बाहर निकते सोए, जन नानक आवे ना जावे कोए, पैरों महला पंजवा, जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है, कोट उपाव चितवत है प्राणी, सो हो वै जे करे चोज विदानी, राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार राव, जिन सेविया निरपो सुख दाता।

जन नानक अपर न साचे कोए ठहरो मैला पंजवां। तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरे नरहर तौ करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, दुतिया नासत इक रहा समाये, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कह

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

मनो एक रोग का सगल संसारा त्रिविध रोग में बदे विकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी पर मैं रोग बंद रहन गति न पावे बिन सतगुरु रोग कटे न जावे पार ब्रह्म जिसकी दया वहाँ पकड़ रोगों कद लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुरु रोग मिटाया कहरो महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख पांजे चीत आवे ता सरदा पूरी चीत आवे ता कभे न चूरी अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। कहरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया ता

मन तन शीतल मन अमृत उठा पार ब्रह्म गुरु कहे दयाला नानक दास देख कहे निहाला पैरों महला पंजवा सतगुरु मेरा बेमोहताज सतगुरु मेरे सच्चा साज सतगुरु मेरा सब सा दाता सतगुरु मेरा पुरख विदाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पास हो लागा सेव रहा सतगुरु मेरा।

सतगुरु तै हों सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन का दिखलाया, जिन गुर सेविया तिस पौ ना ब्यापे, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापे, नानक सो देव सुमरत भेद, पार ब्रह्म गुरु नाही पेद, पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरवाया, नाम लैत असठ मजन आया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेश तक ज्ञान रहाओ, नाम लैत दुख दूर।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, रुमन दी जैता को वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख डेरा तहे, अमृत नाम शीतल मन गहे, अनेक पगत

आधार कहो नानक जिस आप दियार है रो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संताप।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किलवित जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भक्तन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर अप

स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते से प्रदान है।

रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विलास, हों बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक।

नाम तिसर नाही सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए

संजमा संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दूप साम, दान दैत निंदक को जाम, संत संग करें।

चाहे निर्मल मना सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नहार स्वामी।

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौ नसे जन अपने के हर मन वसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर के काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आप मार आप जीवाले अपने भगत को सदा

बिरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए। रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम तिराए हर हर, हर

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुर कहे दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

अगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो, तीरथ नाए कहां सुत सैल। मन को व्यापे हो मैं मैल, कोट कर्म बंधन।

प्रभ नहीं जा पाया। तन तन साज तन हर नाओ, आठ पैर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, पैरों महला पंजवा, गुर सो प्रसन्न होए पाओ गए, नाम निरंजन मन में ले, दीन दयाल सदा कृपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन पने, रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मैं बिन स्यो महाप्रेत, आठ पैर हर हर जप जाप, राखन हार गोविंद गुर आप, अपने से

नानक सब किस प्रगते होए। पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे। सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत पक...

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन ते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिय नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिल माहे, पार ब्रह्म वसिया मन आए।

सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ पैरो महला पंजवा पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

ना सुच हर माने, अंतर मैला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ, कभे न काले

मुखते बोलिया ता कड़िया विचार अंतर जामी करता सोए हर जन करे सुने चल होए हर का दास साचा दरबार जन नानक कहया तत विचार पैरों महला पंजवा

पंजवा सतगुर अपनी सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड़ समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जा का किया सब किछ होए तिसका अमर नामे तय कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूर्त।

सगल फल पुने पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बिचारा अमृत बाण।

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं पढ़ो अचार,

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, राजमार्ग

हर प्रभ आप मिलाए, गुरु की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिवलाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुरु के शब्द विचारे, नानक तिन कै सदबल।

जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट तन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस साला ही जिस हर तन रास, सो वड पागी जिस गुरमस्तक हाथ रहाओ, जिस नाम हृदय तिस कोट कई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखेना।

आया, कहो नानक तत्तै तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

தர்த்தியான कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

सोतर वर चंदन होय निबरियो, पारस के संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन होय निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे होय निबरियो, माथे तिलक हाथ मार

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन

आहे। क्यों लीजे गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

ज्योत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्तर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड़।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामी प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहू न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बारिक अरमाता, ऐसा हर सेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत।

जपताना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रह मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत न देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब है।

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूं मैं सुरत विसार, हूं मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

पहला सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवर नदी सह सर्व तो हो तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिले गुरु चरण सेव मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम विप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला।

नानक हर गुरु संग थिए बसंत महला तीजा सर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किने न पाया आद अंत।

जीवत मरे अंदिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोय फल लाए।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यो पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

गुर के शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चे पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनु एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वक्त

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर छावकणी फूली बन राए गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक को चेते फिर जून नावे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम से वो

एको करता अवर्ण कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम सुमाया, बसंत महला तीजा, भगत करे जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर खेती सद रहे लिव लाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए राव, एको सेवो अवर न कोए, जित सेवे ऐसा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, जिस बिन अवर सेवी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक स्नान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सदगुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साच समाए, साचा से वो साच पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मन्ने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

पल लै पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसै।

शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निध

नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे हौं मैं जल जाई, वड पागी हर नाम बिचारा, छूटे राम नाम दुख सारा, हृदय वस्या सो बाहर पसारा, नानक जाने सब उपावन हारा, बसंत महला तीजा इक तुके, तेरा किया किरम जंत, देता जापी आदमंत, गुण आस विचारी मेरी माए, हर जप हर कै लगो पाए रहाओ, गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद, काहे जन्म गवावो वैरवाद, गुर कृपा की नीचू का अभिमान।

संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया।

टूट ना की अकुली है पाई, सब संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद।

मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुथा मिले।

राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देव मिलाए, देखत दर्श पाप सबना से पवित्र परम पद पाए। राव पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया। गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उभरिया। तखंड परम उपाव कर था के, हृदय अंतर माया।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विकमल परया, मिल संगत कर

हम कीए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिरी दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, बुर अंकत शब्द दा

लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पय मुक्त पग थरा दें जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक कृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन आधा ना हर रसें स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरुष अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो इहो निधान बसंत महला पंजवा तुम बरदाते दे रहे जी प्राण में रव रहे दीने सगले पोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान हाँ कछु न जानो तेरी सार

करो टेक, सर्व कला प्रभ तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक।

नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद संत बना चरण कमल हृदय उधारे सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण जी जंत तेरे आधार कर कृपा प्रभ लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुरपूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती। साकत फिर आवे जावे रहाओ।

साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया,

अंदिन उपजी सहज तुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन बेटे नितरा तो हर नाम रंग रहाओ कर कृपा।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप गुर अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाओ सब फल पाए नहीं चल गुण गाओ ना

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए, इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंतकाल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुरु, सुख सहज से ती कर जाते, हर आते खेले आते देखे, हर आते रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया।

क्या है भाणा कहो नानक कह कया दुआरे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मैला कन्यवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

की गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

प्रेम आधार, गुर शब्द बिक प्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तो है, नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपाधार, बसंत महला पहला, मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नै अस्थिर दिसे एक

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हूँ मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए कर तारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था की

ऐसे हर के लोग अतीता हर्ष शोक ते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप पछाण रहे लिवलागा जन्म जीत गुरु।

व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत पसम अंधूले।

गुरु नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मज गुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाई, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के

बेमोहताज बेअंक अपारा सचपति जय करने हारा नानक फूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पौरा फूल बेल आपे संगत नीत मेल ऐसी

तू अकल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैं।

तार कर मेहलत चार बहाली, चारे दीवे चौहत दिए एका एका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी।

करेंगे कर कर सिफ्त तुम्हारी, तीरत सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाये।

कृष्ण बिदर कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किछ आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकुर आप रखाए, जे सब साकत करें।

आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सो साखी।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम्पर हार,

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूजे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, पीठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार।

बहु अपार कर कृपा लड़ने हो लाए। नानक दास प्रभु की शरण आए। बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाई। पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रहे नाम से आयदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ, कितों

अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

पंडित जन माते पढ़ पुराण, योगी माते योग ध्यान, सन्यासी माते अमुमेव, तपसी माते तप कह देव, सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अकूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम।

बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिरखिर हासता, निद्रा बिन नर पैसोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गौ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बा

है कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। इस तन मन मदे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को ना बिगु तो मैं को आहे। माँ दो दारन दुख सहो न जाए, मेरो चकल बुद्ध स्यो कहा बसाए। रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभि कमल जाने ब्रह्माद। कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाओ मोय था नाहे, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुख आप हीर, सुख सागर गुण रहो कबीर। नायक एक बन जारे पाच, बर्ब पचीसक संग काच। नौ गैया दस गोन आहे, कसन बेहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जिहे कटे मूल नित।

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, दैद सितांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवे जूठे जाए भी जूठे, जूठे मरे अभागे,

बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना

ते त्रुट टुहाकती सर पोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

सब दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस पर में है सो

जो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना।

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रया भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूलत, पुरुख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे

हारी, कृष्णा जलत ना कबहु बूजे, जुए बाजी हारी, उठत बैठत हर गुण गावे, गुर किंचित कृपाधारी। नानक जिन को नजर भई है, तिनकी तै सवारी, सारंग महला चौथा, हर हर अमृत नाम देहु प्यारे, जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया, तिनके काज सवारे रहाओ, जो जन दीन भय गुर आ गए, तिनके दुख निवारे, अंधिन भगत करें गुर आ गए, गुर के शब्द सवारे, हृदय नाम अमृत रस रसना।

नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सो सत।

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे, बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार संत जना के

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गा।

पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर

परभवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम मुरारी।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत।

अंतर प्यास चात्रिक ज्यो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई न

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत पल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए। चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए। देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम, हर छोड़ न कत

गोविंद ना पजै अहं बुध माता, जन्म जू है ज्यो हार है रहाओ। नाम अमोला प्रीत ना किस्यो, पर निंदा हितकार है। छापर बांध सवार है त्रिण को, द्वार है पावक जार है। कालर पोट उठा

अवर सब फूले प्रमत न जानिया। एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदें तत पछानिया। रहाओ परवृत मार्ग जेका किस हो।

医生。खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा सारंग महला पंजवा हम दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

और ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल बिना से जो आवे हर संत सरन, आप जपे अवर

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ।

मान अभिमान हो सकल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुरु सतगुरु पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोह गृह में पाया जन नानक तपत बुझ।

मानस जन्म गुलवाई, गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुझे।

मन कहाँ लुभाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे, सगल अग निमख ही है हर नाम दियाए रहाओ, सोर स्यान को बहु चतुराई, साधु शरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जमते होवे तरम राए, एक कस दिन नाही को दूजा, आन न बियो लवे लाए, मात पिता पाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए, सारंग महला पंजवा, हर जन सगल उधारे संग के, पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ, मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिनसो गोष्ठ से तरे, बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिनकी तूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे, सारंग महला पंजवा, हर जन राम राम राम के आए, एक पलक सुख साथ समागम, कोट बैकुंठे पाए।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिनस लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो।

तमतो प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पर आते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पए सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दया।

मेरे मन शीत आये त्रय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा, ऐसो मिलो मनोहर।

वाणी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा त्रय अंक समानी रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुर सुजानी।

आम संताने कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लोकानी सार महला पंजवा अब मेरो पंचाते संग टूटा दर्शन देख।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगै अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख उपाय समावे देख चरित मन मोहन रहाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समरथोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा किन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा अंधकूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेश।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया। हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया। सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

स्वामी और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे कहो नानक मैं

लाड लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बार की न्याई जैसे मात पिताई किस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल

सुख दाता प्रभु ध्याय यह रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अव

औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रह काठ सिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेर सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

मन अविनाशी कहो नानक मन आनंद भया है। काकी जम की फांसी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात कमात कृपा ते बौर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

कहो नानक सास विचारो सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रह न जाय करी सर्व सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी राव मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत अनद घना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कवन भना स्थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहू नानक तिल पवन पवित्र।

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

अपनी इतनी कछु न सारी, अनेक काज अनेक तावरता, उर्जियो आन जंजारी रहाओ, ज्योस चार के दिशे संगी, हुहा नाही जह भारी, तिन्स्यों राच मात हित लायो।

देवन हार बिसारे अंदुले जो ससरी उदर भरे बह हाथुले साध बिकार बिकार चूठ रस जै जानो तै वीर बातुले कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोत ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो जो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक।

जन का संग पाई है वड भागी, नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम्हारे पाए, अनेक जोन प्रमते।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम

निर्भव भय सगल पहु मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़े

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

तिस बुर कह जाइए बलिहारी सदा सदा हो वारिया रहाओ। गुर का नाम जपियो दिन राती गुर के चरण मन धारिया गुर की तूर करो नित मज्जन किलविक मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा।

सिमरत नाम प्राण गत पावे, मिटे कलेश त्रास सब नासे, साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर नानक का बार बार नमस्कार है। सारंग महला पंजवा बिन हर है।

अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

देत सगल अपियाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाई।

सच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ निर्वाण।

चरण नित प्यावो, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाव रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा रहाओ। सत परमेश्वर सत साध जन, नेचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाका अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नेरे रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन कौ गनिए हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, और परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या सेखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जाके रास सर्व सुख स्वामी, आन ना मानत देखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे बिनस जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे कुर को लागे सोई तुरंतर सोई बसंदर हर एक

कोई चतुर्सियाना पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्योमीना जल स्यो उर्जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चा

मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावत गीजे, होहत नै संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख कोरी।

करना है। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु वैला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

अनेक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा माई री चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के कुहु दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा।

दीन दुख पंजन परा पूर्व ला जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जो

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण।

कास्यो न्यो लगाई जो दिसे सो सगल विनाशे ज्यो बादर की चाही तज अभिमान शरण संतन गयो मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवावे।

कटे न कीमत पाई, बिन नावे सब कोई निर्धन, सतगुरु बूझ बुझाई, प्रीतम प्राण पै सुन सजनी, दूत मोए बिख खाई, जब की उपजी तब की तैसी, रंगुल भई मन भाई, सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपौ विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग।

सिंच भय सुबर सर गुरमत साचने आला मन रत नाम रते ने केवल आद जुगा दयाला मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रसरते अधिकाई, एक तस्बिन में अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

आवा गौण निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाईए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाणे, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एको जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई सारंग महलाती जा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जग

सच संजम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा।

आई मुक्त पाए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पाए कृपाला तिन पव सागर तरिया हम नानी नी

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार, मन पीतर

ता अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

नाभि वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया, पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया, आपे खेल रचायन सब जगत सवाया, त्रै गुण आप सिरजियन।

करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

सच पवे तुर लेखे पौड़ी। नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई है भाई। नाम निरंजन वर्त

ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर सब दीन लिया। सतगुर के पाने जो चले हर से तीर लिया, जम काल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

पर दर्ब चुराया, पुत्र कलत्र न विसहै, बहु क्रीत लगाया, देख दिया ही माया तो गई, पछताया पछताया, जम दर बदे

बलवंश कर उपाव माया हिर आणया जमकाल निहाले सास आव कटे बेतालिया। नानक गुर शरणाई उबरे हर गुर रखवालिया। श्लोक महला तीजा पर पंडित।

कुल न हो गई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना, चित रोग लग जाए तन खाए। नानक रक्त सब सलाहना, आपके ले मिलाए महला तीजा। जिया अंदर जियो सब।

हर गुरमुख नाम दियाए, दुख पुख काना सब चुकाए सी, मिहु उठा छे बरलाए, सब तरक पाई हरियावली, अनजमिया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर किसे त्यावो संत जनों, जो अंते ले चलाए, हर कीत पगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख दुख ले जाए, जन नानक तृप्त गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी, गुरपूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया, तुस देवे आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे होमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत

मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहाग हरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा की तो पे उत ही ते, उत ही मैं समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

जिन तन तिरका साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी पई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी बरस कना मेरा सिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहा नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों हम जिन पगत सुहावी मुक्त पय गुर बरस लिखाया जुग जुग पगत सुभावी हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौर न पव जल फेरा अपने तिर हर देश विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सबद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मलार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछय बिकार दुष्ट पाओ तब निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता किसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

मानसता तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न पाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटे से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाए।

जिस ते हो आतिशन समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं सबद जलाए, सच्ची भगत करें दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै सबद सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बच्चे तिस बिघन न कोए रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत न भाए। गत मुक्त कदे न हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए। सतगुरु पेटिए मन मर रहे हर नाम वसे मने।

तेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा, गुरमुख कोई गुरना बूझे,

गुरुमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरुमुख आप मिलाया बच्चे पलट पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुकलाए मल्हार महला की जाए गुरसावाही सदा सुख दाता।

सह नाम समाही हम दिन हर रविवार अंतरे सह समाध लगाही सतगुरु शब्द इह मन ते दिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभु अर्थ न जाई लखिया गुरमुख अकथ कहानी आपके दया करे सुखदाता।

एक को एक वसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हौ मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बूझे।

दात समझ सुख अंतर सदा निभय तेरे आल राव। मन मुक्ता खंड कभी न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ नावे अन दिन सदा पछताए मर मर जन्म कदे न बूझे विस्ता मैं समाए। गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याग।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूझो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम बखाने।

कर कृपा गुरमुख लगे प्यार, अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार, दर्शा चे दुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया, बिन गुर परम पूले बहु माया, हों में ममता बो मोह वधाया, दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपके करता अगम अथाहा, गुर शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुरमुख नाम समाहा।

हौ तुन जम के सब लागो पाए, हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ, माया मोह अज्ञान।

रखना नाम सब कोई कहे, सतगुर सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गए, गुर शब्दी अस्थिर कर गए, मेरे मन काहे रोष करी।

सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन पागा नाम न पाया जाए, बहु विरथा का कर्म कमाए, त्रैगुण बाणी वेद विचार, बिखिया मैं बिखिया।

गुरपुर हूं मैं तीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किलविख मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार था प्यो महसारी। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुर

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करण सुन ध्यावे अब सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तित जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे मला

नाही हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अंगिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वो आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभ कृपा धारी, दिख दुखदा पाब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाय, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेतें, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मद्दन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंथ को बतावे, हौंता कह पाई लागी रहाओ। हर हमारो मीत सफाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मनमोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परवाह का।

खीर आधार बार्क जब होता बिन खीरे रह न जाई, सार संभाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बार्क पिता प्रभु दाता फूले बार्क अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बार्क बपरे की सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी, नवनिद नाम निधान गृह तेरे मन बाँचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभु चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना। मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरम्भियो करका। ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी। रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। पगत करो निर पाए जब प्रे आए बसे।

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का ती हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहुजोनी एक न काहू तरते रहा।

जगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हों एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मनार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय बसाए, कर कृपा प्रभ आत्म लाए, अपने सेवक को लय प्रभ लाए, ताकि कीमत कही न जाए, कर कृपा पूरन।

रासनहार सदा मेहरवान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुर पूरा पाये वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार महला पंजवा।

नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मलार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या हो है आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

लाए, चात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाए, कान हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाए, मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाए, खिन तिल रह न सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई, तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद काही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर में को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रैस्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी उदो पूखा पीवा नाम सुवाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास

दुर्गै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नदर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख न जाचे हृदय समाल, रहाओ एक जी कै जी आखाही, जलत तरती बूढ़ी जल माही, सर्ग जी की ये प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फांस पड़ी

मन मेरे हर हर नाम शीतलाए, सतगुर ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसार जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वरसदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सहै मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

तिस जेवड़ अवर ना कोई आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे।

मुक्त कदे ना हो वही नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुतही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके वेदा का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास जम काल सिरों ना उतरे अंत

है। हर सिउ रहा समाये, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे, गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

आप उसको आप मिलाया, तम पंजन हर राया, अचरज स्वामी अंतर जामी, मिले गुण निध प्यारिया, महा मंगल सुख उपजे, गोविंद गुण निध सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया, वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की तुन, एक ओंकार सतगुरु।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द ना।

तू सच्चा मन सच महला पहला हेको पादर हेक दर गुर पौड़ी निज थान रूड़ो ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत बिछोड़ चंदो आताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन कुर्बाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्दना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया ना किस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वर्ताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

संतै चित करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी जिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सावन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाण मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवाणी है। सत संगत मेलाप जिथे हर गुण स्वभाव खानी है। नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणी है। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग। रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए। नानक तै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा। ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग। नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रह बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

सहलाए झड़ी नानक पाने चले कंत के सो माने सदा रली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपने इसमें गए हक किस ना है।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश पर खिनमे टाहे उसारण हार।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बख्शे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

लाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते हो मैं तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वर्षे कृपा धार, नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए, गुर के शब्द विचारिये गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए, हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ न पाए, विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ न वसाए, श्लोक महला तीजा। बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, एहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवक गलवन।

आहे जल फल चहु दिसवर्ष दाया खाली को ठाव नाहे ए ते जल वर्ष दे तिथ मरे ताग तिना के नाहे नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पियाए तुझे समाया जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया जला बिंब असराल तिने वरताया नील अनील अगम सरजीत सवाया

नानक एहो जगत सब जल है, जल ही ते सब कोए, गुरु प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी, मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी, सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी, मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जानी, महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए, खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए, बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की सिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए, क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रहन न जाए, गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए, नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख मैं

संत धन दूजे पट खोई, एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई, बिना में बाजारिया पिहावल होई, पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, और गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले सबद गुरु कै काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अवगण यार जिस बस से सो पाए सी गुर सब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जले हर मान का हब्बे मणि मखन, नानक जो प्रभु पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समालिया, अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया। कोई न सके जमकाल सच्चा रखवालिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वर्ते सच सच्चे सगर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए, मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छह बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वस्या मन आए, नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या अमृत जल पल न पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुभाए। नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही, एक पाला टक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही। एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही, गिनना में तन छार क्या कह रो वही। सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा। बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा। बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया। हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया। तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया। बिन शब्द आचार

गुरमुख शब्द संभालिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआनाया, शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, डर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया, पूछ ना सके कोई जाखस ने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया, श्लोक महला पहला, कुल्हा दें दे बावले, लें दे वडे निलज, चूहा थद न मावई, तिकल बन्ने छज, दीन दुआई से मरे, जिनको दीन से जाहे, नानक हुक्म न जाकई, कित्थे जाए समाहे।

गुर कै शब्द सलाहिए अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत में हो गई विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जिंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

मन वसाई अपने पाने को किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुरु बूझ न पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला शरण करम दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगे दुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख रूपी पुख ना उतरे जा देखा ता पुख जेते रस शरीर के तेते लगे दुख। महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधे तन अंध चिकर लाया क्या थी है जा टुटे पत्थर बंद बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुल्हा ना हाथ नानक सच्चे नाम बिन केते डुबे साथ। महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा लख साहा सिर साहा लख लस्तर लख वाजे नेजे लखी कुड़ी पाप साहा जिथे सायर लंगना अग्न पानी असगाहा कंदी दिसना आवई ताही पवे कहाहा नानक उठे जानिए साहा के ही पाप साहा। पौड़ी इकना गली जंजीर बंदर बानिए बद्दे छुट्टे सच सच पछानिए।

दया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाहो, मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कैसकदारा, इना पर्या

अगर जरे तानो कुल बंद पूजे प्राण होवे फिर कंद कहां से आया कहां ओ जान जीवत मर्त रहे परवान हुक्मे बूझे तक पछाने तिहु प्रसाद गुरु ते जाने होंदा सरी अगनानक जान।

नास आप छुटे न छूटिए नानक बचन दिनास महला पहला मास मास पर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंगा मार होम जग किए देवतियाँ की बाणे मास छोड़ गैस नक पकड़े।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाए सुध राग मलार बाण।

कोटवाल सो कराश्री सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे दांगिया।

निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे है करी सर्वव्यापक अंतर हरी प्रणवे नाम देव तांची आन सगल भगत।

रंग रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुणी रे, संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी, मिलत न होए आनंद। तर तार अपवित्र

रही हा पियो कहो रविदास पयो जल देखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नवा चौक दे महला चौथा।

बलबल बलबल सात जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम सात जना पग परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस वत करिया, जो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, जो साबुन का पर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सत गुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुगद

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक राव, नाना रूप रंग हर केरे, कट कट राम रवियो।

मात पिता बंद पहर साख कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या परम पर।

जय राम रविया कट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काड लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए, सत्संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथकात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर आनंदो आनंद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम कृपा।

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर द्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, सहु नानक कौ

अनेक स्वांग काछे पेख तारी, जैसो साते सो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आयो, सब ते परे परे ते ऊंचा, गहर गंभीर अथायो, ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यो परदा लायो, गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाज समायो। कानड़ा महला पंजवा, संतन पह आप उदाहरण आयो, रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नामायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल तर

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूर।

आनड़ा महला पंजवा करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। कतिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाई मान।

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद पयंत सांत अमृता रस पी

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोह त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रम नास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भये ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माय रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रह दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, खोरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

भरोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाध समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीर।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पे तत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोकत कपट खपट खल गर्जत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत कुमित हित प्रीतम, तेखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता हर विश्व।

साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

पूजा जे हर पावास, माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास। प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पै तेरे, नव निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दरतेरे, सो पावे जिस लिखत लिलेरे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करेरे, असत मज्जन मैल कटेरे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले लाख करोरे, प्रभ जी को नाम।

बरना साकू एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बर्त नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग ब्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन प्रम्यो।

पहला पंजवा करियारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करे बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संतरे नाई कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

जात सदा सदा सदा सदा काल है। मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन पजन पजन पजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन राम।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारी।

अज्ञान लाए सवालिया गुर ज्ञान लाए जगावे गो नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो कानड़ा महला चौथा जप मन हर हर नाम तरावे गो जो जो जपे सोई गत पावे ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो रहाओ।

मिल सतगुरु नाम सियावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मन लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वड्याई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो, जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावे गो, जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी

मन गुरमत चाल चलावे गो, ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ, चल तो चले चले दह दह दिस, गुर राखे।

लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कड़ा रे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावे गो पंकज मो

ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावे गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावे गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावे गो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावे गो। दयाल दीन पए हैं सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावे गो। सतगुर सरन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचे नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत्संगत राख समावे गो छक्का पहला कानड़ा संत में।

गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सत्संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायण बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायण सगले जंत पजो गोपाल, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले पर

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गिया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौं मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवर ना कोए जो हर प्रभु पावे।

नानक गुरमुख हर साल आया, तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना, तू कट कट हर रंग रंगना। सब त्या में तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया, हर जाते सब मंग मंगना। सेवक ठाकर सब तू है तू है, गुरमती हर चंग चंगना। सब कहो मुखो रिखी केस हरे, जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा, हर हर नाम से आए मन, हर दरगे पावे मान। जो इच्छे तो

गुरुमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूरब लिखिया तिन मन वसिया।

रंग परंग सिस सब साजी, बहु बहु विद पांच उपावणी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार, गुर तुठे हर

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विचकल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौ प्या हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरुमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे ए आनिया, हर तुम बड अगम अग

गुरु सतगुरु मेल दयाल। गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यों का आल जंजाल। गुरु तुठे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अकुत कन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिद्ध उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सुरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए। जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब जी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंखार हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा। जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती। तिस रूप नहीं प्रव रेखिया गुरु बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत ने सेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे। रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना प्रगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग। गुरपुरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी जित हर सेवा मन भाणी। हर कथा सुनावो मेरे गुर सिखो मेरे हर प्रभ अकट कहानी। क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी। हर मेल दिखाए आप हर गुर बचनी नाम समानी। तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी। श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे। मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम।

कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

सुध राज कानड़ा बाणी नाम देव जीओ की इको ओंकार। सत गुरु प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ बसे कटाकट।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बारिक प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस सस्या हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बकीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतः सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जो न साके चरनी आए पवे हर जाने जाको राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पहकाने ताको कोई अपर न साके जाकी भगत मेरा प्रभु माने हर के चोज विदान देख जन जो खोटा खरा इक निमक पछाने ताते जन को आनंद भया है रिद सुद मिले खोटे पछताने तुम हर दासे समरथ स्वामी इक मांगो तुझ पासो हर दाने जन नानक को हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्श रे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीर हीर विदाये। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी। कल्याण महला।

नाम जपत तै पाप खंडली, जोग जुगत ज्ञान पुगत, सुरत शब्द तत बेते, जप तप अखंडली, ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा, कौन विद ताकी कहां करो, तर्क ज्ञान शस्त्र गया, अजर पद कैसे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापी है भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाथिया दुख काल। कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागत।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनिक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुबद दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजे हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजे रहाओ कास्त में ज्यो है बेसंतर मत संजम काड कटी जय राम नाम है जोत सबाई सतगुरु

ਜੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਊਤਮ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਲ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲ ਔਰ ਨਾ ਉਪਮਾ।

हम निर्गुणी मनूर अति सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस मिकते नाही, साकत संग ना की जाए, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जाए, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जाए, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर ना पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म

मन तन अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय।

जो पीप पलास खाई ली जाए, सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए, निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित साखा हरी जड़ी जाए, परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बास

नाम बिना नक ते नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाय साकत नर अंकारी कही है बिन नाम है त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाय किल विख दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभु आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन सबल अत बिख्या।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब पट पट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काले अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, दो दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, पूर साधु की लो चीज है। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जय। परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। काते बिलम पल टिल न की जय, जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत सत कर माने,

जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महापंथ बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम राम राम राम राम राम ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज परवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे

तेरा अमृत बिक उठ जाए, नाए तेरे सब सुख वसे मन आए, बिन नावे बांधी जमपुर जाए। नारी देरी कर बरदेश, मन किया खुशिया की चैवेश, जहाँ सदे ता टिल न पाए, नानक कूड़ कूड़ो हो जाए। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरख तिथे लोए, अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय खोए। यो संसार सगल विकार, तेरा नाम दारू अवर नास्त करणहार अपार। रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर। दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख, जित मुख तू साल आई है तित मुख कैसी भूख। नानक मूर्ख एक तू हवर पला सहसार, जित तन नाम न उपजे से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म न पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कही है करिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई। रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी, तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा। जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बसावे, एते गुण एतियां चंग्याईया दे न पछोतावे। तुद सलान तिन तन पल्ले नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला, जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा, सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदु सहजे तत विचार, जाते फिर ना आवो सहसार। रहाओ जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला, शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला। जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई, गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जा के आस नाही निराश नाही चित सुरख समझाई, संत को परम संत मिलिया नानका बुध पाई। प्रभाती महला पहला, कांका तहया दर परवान दिख अमृत दो संकर जान। क्या कही है सर्वे रहा सुनाए जो किछ वर्त है।

सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्टक तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

परवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करकार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आशा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए।

जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहा। कहो न बूझे अंग न सूझे ओंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर।

छोड़ न पावे जब लग दूजी राई। एनिस जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई। कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार। ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा। रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने। कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच सोए उत्तम आख ना ऊंचा होए। मनमुख फूल महा बिकाए गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार। नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे किसको जयकार। तू बच्चे जात पत होए नानक कहे कहा वै सोए। हरवाती महला पहला खाया मैल हदाया पेंदे कर की हान। बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासया दिवलो चाग सहज परगासया। रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए। जम गरबा दे मारिये छूट सा चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुखमूल गवाया दरगह मिले सजाए। जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार। ए नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरे नीजर चरे हमर अनंत स्वरूप। नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई। रह सुरंग सुरमाई पाई पैनन खां चीत न पाई। सात सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे। रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा। कीरत कर्म कार निज संदा अंतर रव तो राज रविंदा।

दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगह माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराचित काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको क्या किस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है।

छायर सपत परे जल निर्मल उल्टी नाम सुनावे बाहर जा तो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साथ शब्द मन मानिया राग करवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरुमुख विरला कोई बूझे सब दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पवित करो दिन राती इस युग का लोहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम चित लाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुर दिया दिखाई प्रभाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत न पाया सब दे देहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुर ते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड़ अवर न दाता पूरे गुर ते पाई प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता विच्चों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन।

नासो हुआ न होग। हर जियो सना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यों राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करें कृपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, कोई ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाए, नानक नाम सलाए सदा तू, सच्चे शब्द समाए। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुखदाता।

गुर के शब्द कहल प्रगाशया हौ मैं गुरमत खोई सब नाम एक को सच वरते बिरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांच बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुरते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषं चे जो किछ करे सो नरक पड़े एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक से उत्पत्त चले नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगर सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विकास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुर मुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पद चारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मुझ फाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो रिन बादे बहु विदबाल सत्संगत मिल मत बुद पाई हौ छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल
दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। सिखिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रस प्रतीक, गावत सुनत गौ पै मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक, मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस जीक, रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिना मस्तक उजल टीक, हर जन शोभा सब जग ऊपर, ज्यो विच उडवा सस पीक, जिन हर हृदय नाम नौस्यो, तिन सब कारज फीक, जैसे सिगार करे दे मानुक, नाम बिना नकटे नकीक, कट कट गुनैया रमत राम राए, सब वर्ते सब मैं ईक, जन नानक को हर कृपा धारी, गुरु बचन ते आयो करी मीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी, मुख हर हर नाम हम कहे, पतित पावन हर नाम ध्यायो, सब किल बिख पाप लहे, जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, पाया नगर नगर हर बसयो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो, कर मंदर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उद्याने, ते साकत मूड मुहे, जो मृग ना भी बसे बास बसना, त्रम त्रम्यो चार गहे, तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक को गुर हाथ सिर करयो, हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर, हर जप्यो हर प्रभ वडपा, सतगुरु बचन सुखाने हीरे, हर तारी हर प्रभ कृपा, मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुर पूरे, हर नामा मन तन बसा, रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जप शोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पै सुहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा, अनपौ हर हर हर लिव लागी, हर उर्धार्यो गुर निमखफा, कोट कोट के दोष सब जन के, हर दूर किए इक पलफा, तुमरे जन तुम ही ते जाने, तब जान्यो जन से मुखफा, हर हर आप करयो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जपबा, तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, दिख दुख दे बाह दे कडबा, जप मन राम नाम हर धाबा, उपजंप उपाय ना पाये कतहु, गुरपूरे हर प्रभ लाबा, रहाओ राम नाम रस राम रसायन, रस पिया गुरमत रसदा, लो मनूर कंचन मिल संगत, हर उर्धार्यो गुर हरवा, हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने, उत्कलत मोह लुबा, तिन पग संत ना सेवे कबहू, ते मन मुख पूंगर परदा, तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो, हम करे हार तुम शरणवा, ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला। प्रभाती विपास। करताल महला चौथा। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान, हर दरगे पावे मान, जिन जपिया ते पार प्राण, रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान, सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान,
सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार, सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रहे निरारा, ता तू पावे प्राण पते रहा। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल नीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बख्शे फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा। जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस आया सोई जाने, देख देख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी।

मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए, बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नहीं माया, हड़त पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया, महामुक्ते किया ज्ञानी, गुरपूरे की अकट कहानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव, प्रवासी महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुख मिटाया।

पाप पाप बिन से किन भीतर है कृपाल गुसाई। सास सास पार गम आदि अपने सतगुरु के बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत ना पाये। लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ध्याई है। आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। परवाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिखना से सच नाम गुर दी नीरा से। सब की दरगे शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसे।

कलेस जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाये वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

पाए भगत हर स्यों मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाये, कहो नानक वड पागी पाये। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत साहा, हर की दरगह नाम विसाहा, हर हर नाम जप

गुर पूरा पाये वड पागी, दर्शन को जाये पुरबान रहाओ। चिलगित में ते शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माय निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे कोवे

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पल कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख विदार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बदाया, सब कुछ अपना इकराम पराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, साच शब्द तुझ माए समाया। आवागौण तुझ आप रचाया, से भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर के ते कोई न जानी। सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वित्तों कुर्बानी। पाओ भगत गुरमति पाए, होमे विच्चों सबक जलाए। तावत राखे ठाक रहाए, सच्चा नाम मन वसाए। जिस्म बिनोद रहे परमादी, गुरमत मान।

सुखदाता सेवे निर्मल होए, सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुखदाता दुख मेट हारा, अवर न सूजस बीजी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस्याख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुरंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

याद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई ओ शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संता।

गणत न गनी हुकम पछाणा, बोली पाए सुवाए जो किस वर्ते तुरे सुनाही, सब तेरी वडियाई। गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे, सदा रहे शरणाई। मनमुख मुगद आगे चेते नाही, दुख लागे पछताई।

अंतर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो मैं विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाक रहावे।

मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभाती महला पहला, एक तुर बख्श

दिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब पगत ना होवस, हो मैं पचे दीवाने इन मनु आखिन ऊब प्याली। जब लग शब्द ना जाने भूख प्यासा जग पया, तृप्त नहीं दिन सतगुर पाए। सहज सहज मिले सुख पाये, दरगे पैदा जाए दरगे दाना बिना एक आपे। निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझे पद निर्माणी। जल तरंग अग्नि पवने फुन।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार।

सात रतें सुर उभरे दुखिये दूजे भाए हर मंदिर में नाम निदान है ना बूझे मुक्त गवार गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया उधार गुर की बाणी गुर ते जाती जे शब्द रते रंग लाए पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए हर मंदिर

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाए, पारस पेते है कंचन भया, कीमत कही ना जाए। हर मंदिर में हर वसे, सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए, सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा, कह पाए जागे से जन जागरण करें, होमे मेल उतार, सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरमुख सहज तुम उपजे, दुखों में विचों जाए, हर नामा हर मन।

सुख गाना जप हर हर उतरे पार। होमे विच जागरण ना हो वही हर भगत ना पवई थाए मन मुख दर टोई।

ऐ सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदियां इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज पर्यो मन मी

छोड़ बद नजर पर नारी वेश न पाये महा दुखियारी बोले नाही हो बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अन तेरा ता दुख देही सहता हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मनमुख कर्म करे अजाई जो बालू कर खौरना ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांधियो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग तां दर्शन।

ता गांडा जब कब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करीजा चरण कमल निमख हृदय धारे गोविंद जपते सब।

भरपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गह लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडानी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया।

की हृदय अंतर कर तल काती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामन, क्रूर दुष्ट रता निस्वादन रहाओ। नित प्रत स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं। हृदय चुरी संध्यानी, पर गर्भ हिरण की बानी। शिल्पू जस चक्र गणेशं, निस्जाग सुपगत परवेशं। पग नाच सुचित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला। हृदय कूर कंठ रुद्राथं, रे लंपट कृष्ण अवाथं। जिन आत्म तत्व न चीनिया, सब फोकट धर्म अवीनिया। कहो बेणी गुरुमुख त्यावे, बिन सत गुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिन सत न लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डार।

हाथ है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, यह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

कथा विनोद सुट कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जीत पालके अनित्यम अनित्य चित्तम अनित्य आशा बहुविध प्रकार अनित्य हेतम अहम भम अहम बंद।

बिरंत बिर पतित पाताल जलंत दैदीप दैशांतरे बहंत अगा सोयं तरंगं दुखंत जय चिंता जन्मं तमरं अनित साधन।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋग बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत स्रोता सुख

विपरीत बुद्धन मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

तृप्यते शयनशील संतन सम्मित्र सह दुर्जन नानिक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते।

ਪਿਆਲ ਸਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰ।

परम बादम अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतम बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान भृग जनमने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

सदैन चित्तो जाचा अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

संत सभा में बैठ के कीरत मैं कहा, हर पी सब सिंगार एव ज्यू सब देवा। आस पे आसी तेज सुकंत विछाई है, हर हा मस्तक होवे भाग का साजन पाई है। सखी काजल।